0: हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: लौ आयो है क्वालिटीमा नम्बर 1, दाममा सबैभन्दा कम।
2: ओ प्रकाश कपूर,

तू जैसे नागिन, कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है, थोड़ी गुस्सैल है थोड़ी कंफ्यूज है, लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है, दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है, तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया, गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया, मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो, मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।